0: हेलो हेलो,
1: हेलो, यू ना पुट की वानुक
0: तशिक मदन ऐसी मसान देखिए
1: आज तो सी मात के ऐसा रखनी बाय आलो नी बाली सिग्नल स्लेर की उड़वे अपनी वे उच्च सीट ऐका बुझत रोयोश तन जन इरक न्यू पुटोल मत ऐस की वान्यो फलशेगा रोज बालियो नीचे तशिक ये
0: मिंदर की अम्मन कसन्य का हिवाशत इमात को सुन कहते